0: शांति नहीं
1: हरि भजन
0: जप ज्ञान बिना संयोग नहीं
1: जप
0: प्रभु दर्श बिना